0: वैसे तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि बेबी इट्स आवर सेकंड डेट, हम सिर्फ एक पिक्चर देखने जाएंगे, उसके बाद कॉफी वॉफी ये वो, बट मन में आपके गंदे विचार थे कि सिनेमा हॉल में पिक्चर कौन देखता है यार. सिनेमा हॉल में जो आपके गंदे विचार चल रहे थे ना, यू वांट टू कन्फेस अबाउट दैट, नाउ इज द टाइम एंड दिस इज अ प्लेस टू डू इट, क्योंकि
1: द सीक्रेट बॉक्स,
0: जैसे ये लेडीज बोलती है ना सीक्रेट बॉक्स, मेरे अंदर ऐसे मन करता है कि मैं एक दो कन्फेशन अपने लिए बना लूँ, बिकॉज इट्स लाइक सो एक्साइटिंग. हाउएवर, अगर आपके पास है कोई कन्फेशन, मेरे पास है उसे सुनने के लिए, नॉन जजमेंटल कान मेरी जान, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी.
0: क्या हो गया मिस्ट्री कॉलर, आप इतने दुख में क्यों लग रहे हो?
2: नहीं मतलब मेरे पास एक सिली सी कन्फेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी.
0: हाँ हाँ प्लीज बताइए. आपने आपकी जो टोन है ना, उसी टोन से आपने मुझे अपना इंस्टाग्राम का मैसेज भी लिख के भेजा था. हाय रोशी, मैं थोड़ी सी ना शर्मा रही हूँ, पर ना मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप मुझे बता ही दो फाइनली.
2: ओके रोशी, तो यू नो मेरी ना बहुत पहले से ना फेवरेट मूवी है हम दिल दे चुके सनम.
0: अच्छा,
2: ठीक है. और मैंने ना 10th में वो पहली बार देखी, एंड उसे देखते ही मतलब मुझे ऐश्वर्या से प्यार हो गया था, मुझे सलमान से प्यार हो गया था, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी. ठीक है, एंड तब भी मैंने देखी एंड मैंने सोच लिया भाई अब तो मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है बिल्कुल सलमान जैसा ही, और मुझे भी ना ऐसे आंखों की गुस्ताखियां करनी है उसके साथ, तो आई वाज वेरी लाइक मुझे ऐसे करना है, ऐसे नटखट नौटी सा प्यार मुझे चाहिए. तो मैंने तो बना लिया बॉयफ्रेंड, ठीक है, जैसे ऐसे करके. बट गेस करो, गेस करो रोशी, मैंने उसको कॉलेज 3rd year तक ये आकर मैंने उसे किस नहीं किया.
0: 3rd year तक आके भी आप उसे बॉयफ्रेंड बनाया कब था? कॉलेज के 1st year में?
2: 10th में मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनाया, कॉलेज के 3rd year तक भी मैंने उसे किस नहीं किया.
0: क्यों किस नहीं किया आपने सलमान खान को अपने?
2: मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं. उसको देख के ही, और ऐश्वर्या राय ऐसे कर रही है और एकदम वो डर गई थी, तो उसको देख के मैंने ना सच मान लिया, और मुझे लगता था कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं. और मैंने 3rd year तक, सोचो इतने लंबे टाइम तक मैंने किस ही नहीं किया अपने बॉयफ्रेंड को.
0: वो सब छोड़ भी, मैं ये सोचू कि तेरा बॉयफ्रेंड तुझे कितना सच्चा प्यार करता होगा कि 10th standard से लेके 3rd year ऑफ कॉलेज तक वो कह रहा है हाथ पकड़ के काम चला लूंगा. ये अगर ऐश्वर्या राय तक कैसे भी करके खबर पहुंच जाए, आई थिंक शी ओज यू एन अपॉलॉजी. इनफैक्ट आई थिंक संजय लीला भंसाली ओज यू एन अपॉलॉजी. तो आई होप कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को उसके बाद कॉम्पनसेट करने के लिए इनफ एंड मोर कॉम्पनसेटरी केसेस कर दी हूँ.
2: बस पूछो मत, अब तो बहुत सारी नॉटी नॉटी चीजें कर ली मैंने.
0: मैं जानना नहीं चाहती आपकी नॉटी नॉटी, आप बस रोशिफिकेशन ले लो.
3: You've been roshified.
0: एंटू कटलेट लगते हो आप, है ना?
2: थैंक यू.
0: हाँ, थैंक यू फॉर टेलिंग मी योर स्टोरी. आई मीन, काश मैं आपकी नॉटी नॉटी बातें भी सुन सकती होती, बट मेरे कान ना और झेल नहीं पाएंगे. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही कोई नोटी कन्फेशन है, हिट मी अप नोटी पर्सन इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: It's hot.
1: Mitchie. It's hot.

Mirchi. It's hot.

0: आज मैं आपको एक पाथ ब्रेकिंग फर्स्ट डेट का आइडिया देने वाली हूँ, इन केस इट इज अ डेट दैट डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान. आपका बंदा या बंदी सही नहीं निकले, देन हाउ डू यू कंडक्ट द रेस्ट ऑफ योर फर्स्ट डेट. आप उन्हें एक हॉन्टेड फॉरेस्ट में लेकर जाओ और वहीं छोड़ दो. That is the idea of an ideal first date which has gone wrong for you. अगर आपके पास इससे बेहतर ideas हैं, why don't you hit me up? मैं आपसे सुनना चाहूँगी आपकी बातें, of course. और जाऊँगी मैं कहाँ? नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की spelling है ROCHIE. So find me on your socials and while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

बस तेरा चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तू मेरा नंबर

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने। एक नई एंट्री है हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विच इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। वर्ल्ड म्यूजिक डे का वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑन मिर्ची। शुरुआत करते हैं ऑन दिस काउंटडाउन विद गाना नंबर 10। अनीश सरकार हृदय का गाना। गाने का नाम है उड़ी उड़ी। दो हफ्ते से इस पोजीशन पर बरकरार। उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद द कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का गाना पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी इज ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय नंबर 10।

0: वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, लेकिन जो ये वाला गाना है आदित्य रिखारी की आवाज, रैवेटोर का म्यूजिक अलोंग विद कुटले खां, ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न म्यूजिक. एक पॉप स्टार, एक फोक आर्टिस्ट और एक कंटेम्प्रेरी उबर कूल प्रोड्यूसर, ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaiye. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I truly, really, dil se believe that gaane share karne se pyar badhta hai. Now, is countdown ka jo agle wala gaana hai, wo ek tarah se hum sab ke experiences ko kahin na kahin capture karta hai. Aap, main, har koi ek journey par hai. Destination तो आने वाली है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत खूबसूरत है और हम इसको तय करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपने सपनों के पीछे हम काम कर रहे हैं. एंड somehow इंडिपेंडेंट म्यूजिक एग्जैक्टली उन फीलिंग्स को कैप्चर कर पाता है जो फिल्म म्यूजिक बड़े पर्दे पे उतरने वाली कहानियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये वाली फीलिंग मे बी उस किरदार के लिए हो, बट व्हेन इट्स अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक वो मेरी आपकी आर्टिस्ट की ऑनेस्ट फीलिंग है. यू नो, वो वाली फीलिंग जब हमारा सपना पूरा भी नहीं हुआ पर हम इतना तो आगे आ चुके हैं दैट वापस नहीं जा सकते, पर अब इतना आगे भी नहीं आए हैं कि सेलिब्रेट करना शुरू करें. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम, इट्स बाय MC स्क्वायर, राधिका भिडे एंड विकेट सनी. मे बी ये नाम आपके लिए नए हो, लेकिन जब आप गाना सुनेंगे आई नो इट विल हिट होम. म्यूजिक, गाने के लिरिक्स उस जर्नी को एक्नॉलेज करता है जो मुझे पता है यू आर ऑलरेडी ऑन इट. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. अ नई नवेली एंट्री इस गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय MC स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय.
1: नंबर 8. किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए. सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए. आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ. रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए. दुनिया घुमा रही है, मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ. कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ. मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ. मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ. है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है. जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है. वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला. इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है. घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं. जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं. चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं. पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं. टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं, पर फिर भी सब रोज संभाला है. कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है. लिखी है ऊपर वाले ने, जिंदगी है या मौत की सजा. मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है.

खेत जगे सरवाड़े में, एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चका चौंध के जाड़े में।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 6 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना बताना है, कोई किस्सा कहानी शेयर करनी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट जो गाने हमें पसंद आते हैं ना, जो एक्चुअल में दिल से पसंद आते हैं, जो हम जितनी बार सुने उतना कम लगता है, वो शायद उस गाने के साथ जुड़ा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स इज मेलोडी, लिरिक्स, आर्टिस्ट्री, वो सब है, एंड कूडोस टू दैट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्टिस्ट। बट आज मैं ना उस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा कैसे होता है दैट एक ही गाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए वो पहले ब्रेकअप का गाना है, किसी के लिए एक शाम जब वो अकेले थे छत पे बैठ के आसमान देख रहे थे, मे बी उस गाने की दो लाइन जो सीधा उनके दिल के उस स्पॉट को हिट कर गई जो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जिस्ट भी करता है। एंड ऐसा वंस इन रेयर ब्लू मून होता है ना, कोई गाना ऐसा दिल में उतरता है कि जब हम कुछ सालों बाद उस गाने को सुनते हैं, वो गाना तो अच्छा लगता ही है, बट वी ऑल्सो रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस, उस दिन जैसा फील हुआ था। क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम वर्ल्ड म्यूजिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, म्यूजिक इज ऑल अबाउट how it makes us feel. I want to tell you about this one song, जिसको जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ गए थे। साल 2016 की बात है, मेरा पहला गोवा ट्रिप मेरे दोस्तों के साथ। हम वैगेटर बीच पे थे, रात को 2 बज रहे थे, मजे कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे दोस्त जैम कर रहे थे, मेरा एक दोस्त गाना गा रहा था और अपना गिटार उठाया एंड उसने ये गाना गाया।
2: शाम तन्हा,
0: कॉल्ड शाम तन्हा बाय अग्नि। मैं पूरा गाना आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट दिस सॉन्ग मेड मी फील बैक देन। उसने कुछ अलग नहीं किया मेरे दोस्त ने, कोई ऐसे परफॉर्मेंस में चार चांद नहीं लगे। उसकी आवाज थी, समुंदर की हवा थी, या वो लाइन्स दैट तेरे जाने से मैं अधूरा रह गया, आई स्टिल डोंट नो वॉट वॉज इट, बट दैट सॉन्ग मेड मी वीप। मैं आंखें चुरा चुरा के अपने दोस्तों से रो रही थी, बिकॉज इट मेड मी फील समथिंग जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं फील कर रही हूँ उस गाने से पहले। इट इज अ गॉर्जियस सॉन्ग, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्सपीरियंस दिस विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज वेरी चेरिश्ड मेमोरीज एंड वेरी चेरिश्ड सॉन्ग फॉर मी। हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आज मेरी पसंद का स्पॉटलाइट अग्नि द बैंड का गाना, गाने का नाम है शाम तन्हा। ट्रस्ट मी, दिस वन विल हिट होम। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

माय गॉड, 100 टाइम्स ओवर दिस सॉन्ग स्टिल मेक्स मी फील दैट वे. मोहन करण की आवाज, अग्नि द बैंड का गाना, दैट वॉज शाम तन्हा. At RJ Kanega on Instagram पर आओ, tell me about a song like this which made you feel so strongly that आज भी जब आप गाने को सुनते हो you go back to that experience जब ये गाना सबसे ज्यादा हिट किया था. At RJ Kanega पर आकर quickly इस indie pop quiz का भी answer करें. अग्नि द बैंड का एक गाना था जो एक रियलिटी टीवी शो पर आया था which was all about love. थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, at RJ Kanega पर आके बताओ कौन सा है ये गाना.

0: Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है अर्ज किया है. 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर अर्ज किया है. इज़ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: ना।
1: दिलजीत दोसांझ, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? इस साल तो आंसर नहीं मिलने वाला है। उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हर हफ्ते वी रिसीव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट फॉर आवर फेवरेट सेगमेंट ऑफ द शो व्हिच इज कॉल्ड हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we're going to feature this week is Ek Second. मैं थोड़ी dramatic हो रही हूँ because this has been the most requested cassette classic of all time. मुझे इतना honor feel होता है ना जब मैं वो गाने play करती हूँ जिनको सुन के मैं बड़ी हुई हूँ. And आज का cassette classic exactly वही वाला गाना है. It's Myri by Euphoria.
3: Myri aap hi hansi, Myri aap hi rondi, Myri aad bo Myri.
1: ये गाना सिर्फ यूफोरिया का डेफिनेशन सॉन्ग नहीं है बल्कि इंडी पॉप एज अ जॉनरा का पूरा डिफाइनिंग साउंड बन गया था। एक पूरी जेनरेशन की कलेक्टिव मेमोरी है ये गाना। इवन टिल डेट आई थिंक द जेन जीज, पीपल हु आर बॉर्न आफ्टर 2000s, जब लोग इस गाने को डिस्कवर करते हैं, इसकी म्यूजिकलिटी से इंट्रोड्यूस होते हैं, आई नो द सॉन्ग इज स्टिल फाइंडिंग न्यू ऑडियंस एवरी डे। बट आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू द यूफोरिया डेज। साल था 1998, केबल टीवी नया था एंड हिंदी फिल्म म्यूजिक वॉज एवरीथिंग। इंडियन इंडी जैसा कुछ ऐसा था नहीं, बट कहते हैं ना, सम पीपल हैव गॉट दैट क्रेजी इन देम। ऐसे एक आर्टिस्ट थे डॉक्टर पलाश सेन। एक्चुअली डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, लखनऊ में पैदा हुए, दिल्ली में पले बड़े। उन्होंने अपना एक रॉक बैंड बनाया हिंदी में एंड दैट वॉज यूफोरिया। पहली एल्बम आई कॉल्ड धूम, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने डांस किया, फुल ऑन सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक। फिर साल 2000 में आई उनकी दूसरी एल्बम कॉल्ड फिर धूम, और उस एल्बम में था ये गाना मायरी। ये कुछ अलग था, कुछ अलग ही हो गया था एंड धीरे धीरे सबको इस बात का अंदाजा हो रहा था। ये गाना कहीं कहीं में आपको एक स्पिरिचुअल स्पेस में ले जाता है, कहीं रोमांटिक स्पेस में, बट अंडरलाइंग इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग। लेकिन वो अपने प्यार को चेरिश कर रहे हैं और उसको चेरिश करते हुए पलाश सेन इस गाने के थ्रू अपनी मदर को वो कहानी सुना रहे हैं, मायरी याद वो आयरी, कि मुझे उसकी याद आ रही है जो अब मेरी लाइफ में नहीं है, विच इज सो क्यूट। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए इससे पहले कि मैं यहाँ रोने लग जाऊँ इस गाने के बारे में बात करते हुए। द सॉन्ग विच इज मोर देन अ सॉन्ग, इट्स एन इमोशन, इट्स अ जर्नी बैक टू आवर चाइल्डहुड, अ लव सॉन्ग जो डॉक्टर पलाश सेन ने अपनी मदर के लिए लिखा। गाने का नाम है मायरी बाय द वन एंड ओनली यूफोरिया। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: आई थिंक इस गाने के बाद कैसेट क्लासिक को हमें टाइम मशीन बुलाना चाहिए था, बिकॉज आई वॉज टेकन बैक टू द टाइम. गाना जब शुरू होता है वो चार स्ट्रिंग्स बजते हैं एंड आई एम टेकन टू दिस डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ जिंदगी बहुत सिंपल है, दोस्त तुम्हारे करीब है एंड फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पलाश सेन, द जीनियस दैट यू आर, दैट वॉज मायरी बाय यूफोरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. ट्रस्ट मी, वी टेक योर रिकमेंडेशंस वेरी सीरियसली. इस गाने को प्ले करने में कुछ वक्त लग गया, बट वो जो भी गाना है फ्रॉम द 90s 2000s व्हिच यू थिंक इज स्टिल द सॉन्ग दैट डिजर्व्स ऑल द लव, हमसे आगे शेयर करो. अश्का है माय साउंड प्रोड्यूसर एंड आई विल प्ले अ सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वारे गाने की बारी. 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है बैरन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: सुन रहे हैं आप। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। ये वो शो है जो हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर दिस वीक वाज उड़ी उड़ी बाय अनीश सरकार एंड हृदय। फिर आदित्य रिखारी, रावत और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। नई नवेली एंट्री लॉन्ग वे फ्रॉम होम दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। दिलजीत दोसांझ, सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 7। मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 6। अनूप जैन का अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: दिलजीत दोसांझ द डीलर ऑन गाना नंबर 4।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबी ना।
1: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 3। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके संजू राठौर का बैंगल्स, दो हफ्ते से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, येट अगेन करण औजला इक्की का गाना बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर, स्टिल ट्रेंडिंग एंड हाउ बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। बैंगल्स ऑन गाना नंबर 2 एंड देन बॉयफ्रेंड बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे. हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी. लेकिन हर साल सिर्फ कुछ

चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं। और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है, we've got bigger budgets, we've got bigger marketing, we've got bigger platforms, और फिर भी क्या हम वैसे कल्चरल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे, या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं। मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली, एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना, विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म। ये तो हमने पहले भी देखा है। नंबर 20।

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी, 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है। और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल ये है, जब 2001 में ये मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स है, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते। क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 It's hot. Surin ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 10.
1: Oi

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्ला वल्ला वल्ला। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्ला। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। नाउ हार्डी संधु इस गाने में गाते कम है, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, इन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसल कर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8।

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने ही नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है। स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है, वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोक कर, हर नई एंट्री को देखकर बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें वाकई टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।
1: बचपन

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: अकड़ी पकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो।

Energy. It's hot.

0: cause she's a firecracker.
1: Good morning, guys. This is your girl Priscilla, and if you're listening while pretending to just check your emails, I see you. Welcome to Mirchi Mornings. यहाँ पर फिक्स होता है तुम्हारे मंडे ब्लूज से लेकर तुम्हारे जेट लैग का कंफ्यूजन एंड योर व्हाई डिड आई मूव अब्रॉड से लेकर तुम्हारा एग और मैगी की रेसिपी, सब कुछ यहाँ पर तुम्हें मिलेगा, जैसे कि गॉसिप, गपशप, न्यूज अपडेट एंड मच मोर. एंड आज का लाइफ का मंत्र है, अडल्टिंग इज बेसिकली गूगलिंग हाउ टू सर्वाइव इन 3 डिफरेंट टाइम जोन्स व्हाइल रीहीटिंग यस्टरडेज बिरयानी. तो अभी फिलहाल तुम चाय के चुस्कियां ले रहे हो, कॉफी के मजे ले रहे हो, या अपना क्रिस्पी ब्रेकफास्ट जो है उसे सर्व कर रहे हो. मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों तक. तुम भी मुझे अपने साथ रख सकते हो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चिपक के बैठो मेरे साथ, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग के लिए। 1932 में इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स इन लंदन। 1950 में द कोरियन वॉर बिगिंस एज नॉर्थ कोरिया क्रॉसेस द 38th पैरेलल। 1975 में इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी। 1983 में कपिल देव एंड टीम ब्रिंग होम इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप विन एट लॉर्ड्स। 2009 में द वर्ल्ड मोन्स माइकल जैक्सन द किंग ऑफ पॉप। And somewhere between all this, we also got Anne Frank's diary published and the rainbow flag first flying in 1978. And that's it for history for today. Main hoon Prisila tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Connect with me, Mirchi. Pris is my handle name on Insta and X. MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब मेरे पास है क्रिकेट स्टोरी।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: इंडिया के टीनेज क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी इज हेडिंग टू द यूके। Now, here's the interesting bit. He'll actually have a different changing room from his teammates. Before your WhatsApp family group starts creating conspiracy theories, relax. Reason iska bada simple hai. Vaibhav is just 15 years old. And in the UK, there are strict safeguarding rules for anyone under 18. That means separate changing rooms, separate shower and restroom facilities when minors and adults are sharing spaces. Basically, the UK is saying future cricket superstar to hai, lekin also he is still a kid. It's all about privacy, child protection and making sure young athletes are properly looked after. And honestly, imagine being 15 and hanging around people who are from 25 to 40. हम में से ज्यादातर लोग तो उस एज में सिर्फ सर्वाइव करने की ही कोशिश कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद लर्निंग अलजेब्रा एंड टेकिंग ऑकवर्ड स्कूल पिक्चर्स। सो हियर्स विशिंग वैभव ऑल द बेस्ट एज ही कंटिन्यूज हिज इनक्रेडिबल जर्नी। और तुम्हारी जर्नी में आगे आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड एक्स हैंडल्स, दोनों जगह पर मेरा नाम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं वो प्रिस्सला तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड अगर स्टेप आउट करने वाले हो, उसके लिए ड्रेस ढूंढ रहे हो, तो लेट मी टेल यू आज का वेदर कैसा रहने वाला है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अ कूल 62 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स मोस्टली क्लियर। एंड एज वी हेड इनटू द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, एक्सपेक्ट कि कुछ क्लाउड्स जो हैं वो सुबह सुबह काम पर आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए पार्टली क्लाउडी रहने वाला है, फिर उसके बाद मोस्टली क्लाउडी हो जाएगा और फिर क्लियर हो जाएगा। आज का टेम्परेचर रेंज जो है वो 61 से लेकर 85 डिग्रीज फारेनहाइट तक है, फीलिंग मोर लाइक 62 टू 86 डिग्रीज फारेनहाइट। तो आज के दिन भी हुडी पहनने का मन तो तुम्हारा करेगा, वेदर भी कुछ ऐसा ही है। एंड रेन लवर्स, डोंट गेट योर अम्ब्रेलास टू एक्साइटेड, आज वो घर पर नहीं रहने वाले। फोरकास्ट इज कॉलिंग फॉर लेस देन 1 मिलीमीटर ऑफ रेन ओवर नेक्स्ट 24 आवर्स। दैट्स नॉट एक्चुअली रेन, दैट्स जस्ट ड्रिजलिंग। एंड फन फैक्ट, आज का हाई टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यस्टरडेज। कल का वेदर जैसा था वैसे ही आज का वेदर होने वाला। तो अभी अगर बाहर निकलने वाले हो तो अपना SPF 50 प्लस प्लस प्लस लगाकर बिल्कुल जाना, और साथ में अपना अम्ब्रेला भी कैरी करना। एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, नॉट बरसात के पानी से बल्कि एक्चुअल पानी से। और अभी फिलहाल मिर्चीदार गानों के लिए बने रहो मेरे यानी कि प्रिस्सला के साथ में, मुझसे कनेक्ट भी कर लो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर तुम्हें मिलती है अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले द इंटरनेट इज हैविंग अ फैशन मोमेंट आफ्टर उषा वांस प्लेफुली रिस्पॉन्डेड टू एन आर्टिकल डिस्कसिंग हर मैटर्निटी स्टाइल। शी इवन शेयर्ड अ रिसीट शोइंग वन ऑफ हर ड्रेसेस कॉस्ट जस्ट $8.75। ऑनेस्टली समवेयर इट्स लेस देन इवन अ फैंसी कॉफी। नंबर टू पर इन द पुणे बिजनेसमैन मर्डर इन्वेस्टिगेशन लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग चेतन चौधरी से देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस लिंकिंग हिम टू द क्राइम एंड दैट ही हैड बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। Authorities continue investigating the case while legal proceedings move forward. As always, the courts will determine the facts. And number three, per big congratulations are pouring in for actress Samantha Ruth Prabhu, who has confirmed that she's expecting her first child. Samantha shared that she'll be taking a maternity break before returning to films. Fans across the world are sending their love and best wishes. And there you have it, Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla, on Mirchi Mornings. Connect with me in Store Expert. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय फैबुलस पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। सो एक्ट्रेस ज़ेंडेया हैज टर्न्ड द रोम प्रीमियर ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इनटू हर पर्सनल रनवे। नाउ हियर्स अ कूल पार्ट, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग समथिंग ब्रांड न्यू, शी स्टेप्ड आउट इन अ स्टनिंग 35 ईयर ओल्ड विंटेज जॉर्जियो अर्मानी गाउन फीचरिंग अ स्पाइडर वेब इंस्पायर्ड डिजाइन। बिकॉज इफ यू आर अटेंडिंग अ स्पाइडरमैन प्रीमियर एंड योर हस्बैंड इज प्लेइंग स्पाइडरमैन, व्हाई नॉट फुली कमिट टू the assignment? And guess what? Standing right beside her was husband Tom Holland, proving once again that some people really do get to live inside a rom-com. Fashion experts call it method dressing when celebrities dress to match the theme of the project they are promoting. Personally, I support this trend. Imagine if Desi started method dressing. Going to Costco wearing a giant shopping cart. Going to an Indian wedding, arrived dressed as the gift envelope. Problem solved. Zendaya also rocked a vintage Versace look earlier that day, basically reminding the whole world that fashion trends may come and go, but style is forever. So, aaj ka lesson ye banta hai ki before throwing away something old, remember it could be vintage, or as our moms called it, see, I told you not to throw it out. Aaj kaam aa raha hai. And for more Bollywood and Hollywood updates, mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS, Instagram or X par. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. सो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, यू आर बेसिकली शेयरिंग योर स्पेशल डे विद सम एब्सोल्यूट लेजेंड्स. कौन है वो, लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले वी गॉट कार्ली साइमन, द वॉइस बिहाइंड योर सो वेन. एंड देन वी गॉट रिकी जर्वेस, द मैन हु मेड ऑकवर्ड कॉमेडी एवरीवेयर पॉपुलर. एंड एक्ट्रेस लिंडा कार्डेलिनी एंड बिजी फिलिप्स. Yes, that's a real name. And also, nostalgia alert, we've got Eric Carle, creator of the Very Hungry Caterpillar. Sports icon mein, we've got Dikembe Mutombo. And of course, Willis Reed. So, agar aaj tumhara happy wala birthday hai, then you're sharing your space with comedy, justice, sports, history and a little bit of chaotic energy. Apne birthday shoutouts mujhe bhej sakte ho. To Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp karna hai to 9033 Mirchi is my number. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Hi.

0: सलाम विथ यू मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,240 $4,240 पड़ रहे हैं। उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: देयर यू गो। गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसला के साथ में। अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अब बारी आ चुकी है हमारी कॉस्मिक बातें सुनने की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी मेष राशि, इंपल्सिव एनर्जी अलर्ट। करियर मूव्स में लेट्स डू इट से पहले जस्ट डू अ क्विक शुड आई दो। लकी कलर इज फायरी रेड, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ऑर्गेनाइज योर लाइफ बिफोर योर लाइफ ऑर्गेनाइजेस यू। फाइनेंसेस का स्ट्रिक्ट मोड ऑन करने का टाइम आ चुका है। लकी कलर इज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, टुडे इज हग योर पीपल एनर्जी काइंड ऑफ डे। इमोशनल वाईफाई स्ट्रांग रहना इमोशनल वाईफाई को स्ट्रांग रखना पड़ेगा आज। लकी कलर इज येलो, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, हीलिंग मोड एक्टिवेट कर लो, बस थोड़ा सा सेल्फ केयर, थोड़ा डोंट टेक्स दैट पर्सन बैक वाली एनर्जी लेकर आनी है। लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, अपॉर्चुनिटीज प्लस ड्रामा का कॉम्बो पैक आज मिला हुआ है तुम्हें। हार्ट को ओपन रखो, दिमाग को ओपन रखो, ईगो को एयरप्लेन मोड पर डाल दो। लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, ब्रेन ओवरड्राइव पर चल रहा है लेकिन प्रोडक्टिव भी है। फाइनेंसेस प्लस रोमांस इज इक्वल टू बैलेंस्ड स्प्रेडशीट। लकी कलर इज नेवी ब्लू, लकी नंबर इज 8। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन का पार्ट 1। बाकी बची 6 राशियों को पार्ट 2 में लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में। तब तक तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Hey, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशि जोन पार्ट द्वितीय.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि. बैलेंस फाइनेंसेस लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट बिकॉज योर वॉलेट हैज सेड सो. बी इमोशनली ऑनेस्ट. लकी कलर इज पेस्टल पिंक. लकी नंबर ए 7. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. नो इम्पल्स स्पेंडिंग प्लीज. इमोशनल ऑनेस्टी इज इक्वल टू जैकपॉट इन रिलेशनशिप आज के दिन. लकी कलर इज ब्लैक. लकी नंबर इज 4. सैजिटेरियस यानी धनु राशि. एडवेंचर मोड तो है लेकिन सीट बेल्ट ऑन करना जरूरी है. नो ओवर कमिटिंग. ओके. लकी कलर इज नारंगी. लकी नंबर इज 3. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. यू आर द मेन कैरेक्टर इन सोशल सेटिंग्स टुडे. हेल्थ प्लस स्टडीज इज इक्वल टू ग्लो अप कॉम्बो. लकी कलर इज चारकोल. लकी नंबर इज 10. Aquarius यानी कुंभ राशि. Workplace negotiation may feel like debating with Wi-Fi customer care. Travel small glitches are possible. Lucky color is electric blue. Lucky number is 11. Pisces यानी कि मीन राशि. Focus mode on करो. Work politics handle it like a boss. Smile करो, observe करो, exit करो. Lucky color is sea green. Lucky number is 12. And that's it for your Mirchi Rashi Zone Part 2. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

एंड जस्ट लाइक दैट मेरे दोस्त, मेरा यहाँ से जाने का टाइम शुरू हो चुका है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड डू यू रिमेम्बर पंचायत, द शो एवरीवन लव्ड? उसमें एक कैरेक्टर था विनोद, और उस शो में एक बहुत ही फेमस मीम बना था, देख रहा है ना विनोद. उस मीम के मेन कैरेक्टर्स जो है उनमें से एक मिस्टर अशोक पाठक रिसेंटली शेयर्ड अ हिलेरियस मेमोरी आफ्टर मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी. अपेरेंटली व्हेन द कास्ट ऑफ पंचायत मेट द प्राइम मिनिस्टर एट अ समिट, पीएम मोदी ग्रीटेड हिम विद द नाउ आइकॉनिक लाइन, सुन रहा है ना विनोद? एंड जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, द फर्स्ट टाइम वी हर्ड इट द एंटायर रूम बर्स्ट इनटू लाफ्टर. अशोक ऑल्सो शेयर्ड समथिंग रियली हार्टवार्मिंग कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज. ही सेड दैट व्हेन हिज फादर हर्ड ही'ड बीन इनवाइटेड टू meet the Prime Minister of India, he was absolutely over the moon. And honestly, that's the part I love the most. Whether you're from Mumbai, Multan, Chennai, Colombo, Dhaka, Karachi, Kathmandu, or any tiny village nobody can find on Google Maps, big dreams don't care about your pin code. It's also proof that sometimes the smallest roles, the simplest characters, and the most unexpected one-liners end up becoming part of pop culture forever. And aaj ka takeaway yahi hai, never underestimate your moments. One day you are saying a line and the next day the whole country is saying it back with you. And on that happy, happy note, it's time for me to bounce. Tata bye-bye from me. Thank you for letting me part of your morning commute, your kitchen session, your dream struggle and your life. Stay connected with me on Instagram and X. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: बड़े होते होते रियलाइज होता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या चीज होती हैं, और हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागने का मन करता है। लेकिन बचपन में उल्टा था, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भागा करते थे कि मुझे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जल्दी बड़ा होना है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi, and I still remember. हम या तो अपने छोटे भाई बहनों को पालने का काम किया करते थे, हमें बड़ा मजा आता था बड़े बनने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में, या तो हमारे गली कूचे का कॉलोनी का कोई भी पपी होता था या कोई किटन होती थी तो उसका जिम्मा हम ले लिया करते थे। मतलब अगर ऐसा कुछ मिल जाता था ना हमें, तो स्कूल से आए नहीं, बैग रखा नहीं और सीधे उस पपी या किटन के पास। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, बचपन में ना मैंने कुछ दिनों के लिए एक बिल्ली पाली थी, उसका नाम रखा था हमने हेमा। और है ना, उस बिल्ली का जिम्मा मैंने ऐसा लिया कि मैं अपना खाना पीना भूल जाया करती थी, उसी को देखा करती थी। उस बिल्ली ने हालांकि मुझे खूब स्क्रैचेस दिए, लेकिन फिर भी मैं उसकी मोहब्बत में इतनी पागल थी कि मैंने उसको पाला। लेकिन मेरी मोहब्बत ना उस बिल्ली की मोहब्बत से ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वो बिल्ली मेरी मोहब्बत से ही डर गई यार। एक दिन वो बिल्ली पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और तब से लेकर आज तक हेमा सिर्फ और सिर्फ मेरी कहानियों में ही रह गई, वो मुझे कभी नहीं मिली। ऐसा ही कुछ अभी कल की बात है मेरे साथ हुआ, कि कल शाम को मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था और एक किटन मुझे नजर आया, एंड मैंने उसको देखा, मैंने उसको हाय बोला, एंड उसको लगा कि मैंने उसको घर के अंदर इनवाइट कर दिया है, और वो आ गया सीधा चल के। मैंने भी उसे मना नहीं किया, वो आया, मैंने उसे खिलाया पिलाया, थोड़ी देर में हमारी दोस्ती हो गई, जो कि मेरी बिल्लियों के साथ तब से लेकर आज तक नहीं हुई थी इतनी अच्छी तरीके से। एनीवेज, वो थोड़ी देर में आके मेरी गोद में बैठ गया, मैंने उसको खूब मसाजे दी, इतना प्यार किया, और मेरा दिल उसके ऊपर पूरी तरीके से आ चुका था। लेकिन ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग वो बिल्ला भाग गया, एंड क्लियरली उस बिल्ले को मेरे अंदर रेड फ्लैग्स नजर आ गए थे, क्योंकि मुझे भी उससे हद से ज्यादा मोहब्बत जो हो गई थी, डर के मारे भाग गया होगा। बस आज का ये किस्सा पुराने हेमा के किस्से से जाके जुड़ गया, कि किस तरीके से हमें पेट से मोहब्बत हो जाया करती थी। शायद ये चीजें आज भी नहीं बदली हैं, वो अलग बात है कि यार एक किटन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन बिजली के बिल भरने में ना मुझे बड़ी मौत आती है। एनीवेज, अभी तो हम चलते हैं मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए उसी तरफ जहाँ 90s और अर्ली 2000 की दुनिया बसी हुई है। सो यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बस तुम रहते हो सारा ज़माना सारा का दीवाना।
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जीत मूवी का जो गाना है ना यारो यारा, उसकी जो कोरियोग्राफी है और उसके जो सिग्नेचर स्टेप्स हैं, वो भले हमें कितने भी फनी क्यों ना लगे, लेकिन आज भी जब किसी पार्टी में यारो यारा बज जाता है ना, हम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं यार, अपना कुछ नया नहीं निकालते हैं।
1: मिर्ची VCR।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, सनी पाजी तो छा गए थे जी इस स्टेप के बाद वाकई में, एंड छा गई थी ये फिल्म भी। हाँ, इट वाज अ सुपर डुपर हिट। लेकिन ये फिल्म की एक बड़ी खास बात रही, और वो ये कि 24 साल पहले करिश्मा कपूर के पेरेंट्स बबीता जी और रणधीर कपूर जो हैं, उन्होंने भी एक फिल्म करी थी जिसका नाम था जीत। एंड देन 24 साल बाद करिश्मा ऑल्सो डिड दिस फिल्म जिसका नाम था जीत। और ये फिल्म और भी ज्यादा खास हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जीत की सेट्स पर ही तबू एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म साजिद नाडियाडवाला, दे केम क्लोजर। वेल एक्चुअली तबू और साजिद नाडियाडवाला यूज्ड टू बी फ्रेंड्स अर्लियर एज वेल, क्योंकि तबू दिव्या भारती की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। एंड पोस्ट दिव्याज डेथ तबू एंड साजिद नाडियाडवाला बिकेम फ्रेंड्स, एंड तबू कुड अंडरस्टैंड हिज इमोशंस एट दैट टाइम। लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हो गई दोनों को ही नहीं पता लगा, एंड दैट हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ जीत। इवेंचुअली इस रिश्ते ने कोई मोड़ नहीं लिया बिकॉज ऑफ द रीजन की तबू फेल्ट कि साजिद नाडियाडवाला इमोशनली अवेलेबल ही नहीं थे, वो अपनी वाइफ दिव्या के लॉस से निकल ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से तबू डिसाइडेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ। एंड देयर इज वेयर दिस रिलेशनशिप एंड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर बिगिंस। हालांकि साजिद नाडियाडवाला एंड तबू आर स्टिल रियली गुड फ्रेंड्स। साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा ही फेमस शेर है, और ऐसी लव स्टोरी सुनती हो ना तो वो शेर मुझे अक्सर याद आ जाता है। कहते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: 90s की बड़ी हिट फिल्म जीत, इसके लिए कहा जाता है कि यार ये फिल्म वाज इंस्पायर्ड बाय टू ऑफ बॉलीवुड्स क्लासिक।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड दोस टू बॉलीवुड क्लासिक्स आर मुकद्दर का सिकंदर, जो कि ऑफ कोर्स अमित जी बच्चन जी की थी, एंड द अदर वन इज राजपूत, जो कि राजेश खन्ना स्टारर फिल्म थी। एंड इन दोनों मूवीज के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि जीत में भी देखे गए हैं। अब ये इत्तेफाक है या इंस्पिरेशन है ये तो इस फिल्म के डायरेक्टर ही जाने, बट हाँ मुकद्दर का सिकंदर जिस तरीके की फिल्म थी उससे जीत फिल्म का जो काफी तालमेल है वो बैठता है। एंड जीत वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसमें सलमान खान का गुड बॉय इमेज वाला रोल था, जिसमें वो एकदम मामाज बॉय सीधे साधे से लड़के थे। एंड सनी देओल ऑन द कॉन्ट्ररी ही वॉज प्लेइंग द नेगेटिव रोल, द आक्रोश वाला रोल। एंड आई थिंक सनी देओल का उस टाइम पर यही वाला जोन चल रहा था। लेकिन मजे की बात ये हुई कि सलमान खान इतने हाईलाइट नहीं हुए इस फिल्म के अंदर जितना सनी देओल हुए अपने रोल को लेकर, क्योंकि वो रोल इतना लाउड था कि सबने उसे देखा भी और सुना भी। तो हुआ ये कि इस फिल्म में सलमान खान की जो पोजीशन थी वो थोड़ा सा बैक सीट ले चुकी थी एंड सनी देओल फ्रंट पेज पे खेल रहे थे। लेकिन जब यही चीज डर मूवी में हुई, जहां शाहरुख खान के नेगेटिव कैरेक्टर ने सनी देओल के पॉजिटिव कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया, तो सनी देओल बड़ा बुरा मान गए थे। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई यार, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या थी? ये तो किस्मत का खेल है यार, एक तरफ आप चले कहीं दूसरी तरफ कोई और चला, जिसकी किस्मत में चलना लिखा था वो चला और जिसकी किस्मत में लिखा था ना चलना तो वो ना चला। चलो अभी तो आप और मैं आगे चलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: काजोल के अलावा करिश्मा कपूर वाज आल्सो वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस इन द 90s जिन्होंने अपने यूनिब्रो लुक को बहुत ही प्राउडली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कैरी किया था। मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, करिश्मा कपूर, 90s का जमाना हो, 2000 का जमाना हो या आज की बात हो, हमेशा से ही काफी फैशनेबल रही हैं और वही फुटस्टेप्स करीना कपूर ने भी फॉलो किए हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत करिश्मा कपूर से हुई है और करिश्मा कपूर के ग्लॉसी लिप्स और कलरफुल हेयर बैंड्स, दे बिकेम अ मेजर स्टाइल स्टेटमेंट फॉर गर्ल्स इन दोज टाइम्स। इनफैक्ट जब राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर का नया लुक आया तो उस लुक ने तो तहलका मचा दिया था। एंड देन हीरो नंबर वन के जो लुक्स है करिश्मा कपूर के, माय गॉड, आई जस्ट लव्ड हर फैशन स्टेटमेंट फ्रॉम देन टिल नाउ। बट यू नो, करिश्मा का नाम लोलो कैसे पड़ा? वेल, उनका नाम इज इंस्पायर्ड बाय जीना लोलो ब्रिगिडा, जो कि एक फेमस इटालियन एक्ट्रेस हैं और उनकी मदर बबीता जो थी वो जीना की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। हो सकता है मैंने ये बात आपको चलते फिरते पहले भी बताई हो, लेकिन बार बार इस बात को बताने में ना बड़ा मजा आता है। बिकॉज जस्ट इमेजिन समवन लाइक करिश्मा, जिनके नाम पर उनके फैंस अपने बच्चों के नाम रखते होंगे, उनका खुद का निकनेम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एन अनदर एक्ट्रेस। बट करिश्मा कपूर कपूर खानदान की काफी बड़ी इंस्पिरेशन रही है बिकॉज ऑफ द रीजन की 17 साल की बाली उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रेम कैदी कर ली थी। एंड डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ फेमस फैमिली, उन्होंने अपने आप को हर कदम पर प्रूव किया है विदाउट एनी मेल कपूर बैकिंग हर डेब्यू। इनफैक्ट करिश्मा कपूर ने तो नेशनल अवार्ड भी जीता हुआ है फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर द मूवी दिल तो पागल है 1997। कमिंग अप मोर ऑन करिश्मा कपूर ऑन हर बर्थडे टुडे एंड विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: इस बात में कोई शक नहीं है कि करिश्मा वाकई करिश्मा थी 90s के दौर की। मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यू नो, डेविड धवन ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि करिश्मा जो है ना, वो बिल्कुल पैसा वसूल एनर्जी लेकर आती है, एंड शी वाज हिज गो टू एक्ट्रेस फॉर कॉमिक टाइमिंग ऑलवेज, जिसकी वजह से चीची यानी कि गोविंदा एंड करिश्मा कपूर की जोड़ी वॉज अ हिट हिट हिट। डेविड धवन की मूवी हो और उसमें ये दोनों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था उस दौर में। एंड वो अक्सर शूट करते टाइम सेट्स पर मजाक के तौर पर जब करिश्मा की एनर्जी लो हुआ करती थी ना, तो वो करिश्मा से यही बात किया करते थे कि यार मेरा जैकपॉट लोलो वो कहाँ है, उसे अंदर से निकालो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गोविंदा और लोलो की फेमस जोड़ी, तो देयर इज दिस टाइम जब कूली नंबर वन की शूट चल रही थी और करिश्मा जब गोविंदा के साथ शूट कर रही थी, तो एक सीन में उनका हंसना बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारे टेक्स दिए इस सीन को लेकर। और डेविड धवन जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो यूजुअली एक्टर्स की स्पॉन्टेनिटी को इनकरेज करने के लिए काफी फेमस थे, मगर इस सीन में तो डेविड धवन ने भी हाथ जोड़ लिए थे कि करिश्मा किसी तरीके से हंसना बंद करें और एक स्ट्रेट फेस और स्ट्रेट एक्सप्रेशंस दे पाए। कमिंग अप मोर ऑन करिश्मा कपूर टुडे ऑन हर बर्थडे, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज के टाइम पर जब हम करिश्मा कपूर को अपनी पर्सनल लाइफ से स्टेप आउट करते हुए देखते हैं कि वो कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं, जो यूजुअली पेपराजी कैप्चर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि करिश्मा इज़ वेरी वेरी सिंपल. बहुत ही सिंपल लुक्स, चप्पल्स एंड सिंपल सूट्स के अंदर, सिंपल कलर्स के अंदर वो इधर उधर घूमती हुई नजर आती हैं. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज ही वो ऐसी हैं, वो हमेशा से ही इतनी सिंपल रही हैं. मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा. हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड इन फैक्ट उन्हें अपनी इस सिंपलिसिटी की वजह से ना डांट भी पड़ी थी अपनी मदर बबीता जी से. बिकॉज देयर वाज दिस वन टाइम कि करिश्मा कपूर एक मूवी की प्रीमियर के लिए ना चप्पल पहन के ही चली गई थी. अब जब वो चप्पल पहन के गई तो बबीता जी बड़ी नाराज हुई और उन्होंने डांटते हुए कहा कि तुम कपूर हो और तुम इस तरीके से स्टेप आउट नहीं कर सकती हो. एंड सिंस देन करिश्मा बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड स्टार्स अराउंड. कमिंग अप मोर ऑन करिश्मा का करिश्मा ऑन हर बर्थडे टुडे एंड यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: There was this one time जब करिश्मा कपूर राजा हिंदुस्तानी के लिए शूट कर रही थी और सेट्स पर पैनिक मचा हुआ था। मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा। हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ये सीन बड़ा फेमस सीन है, बड़ा ही एपिक सीन है राजा हिंदुस्तानी का, वो रोमांटिक सीन जहां पर हीरो हीरोइन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। अब ये जो रेन किस वाला सीन है, इस सीन को लेकर करिश्मा कपूर बहुत नर्वस थी, क्योंकि उस जमाने में बॉलीवुड के लिए ये चीज बड़ी बोल्ड हुआ करती थी यार। तो इस सीन को शूट करने के लिए जो नर्वसनेस थी करिश्मा कपूर की, उसको कम करने के लिए जो सेट पर लोग थे, कितने क्रू थे और कितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया था। ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रूज एंड द डायरेक्टर एंड वन कैमरामैन, यही लोग थे वहां पर मौजूद, सो दैट करिश्मा कुड फील कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग दिस सीन। एंड इट पेड ऑफ रियली वेल बिकॉज दिस सीन वेंट ऑन टू बिकम एन आइकॉनिक सीन। इन फैक्ट जो सीन थप्पड़ वाला था ना, जिसमें आमिर खान करिश्मा कपूर को थप्पड़ मारते हैं, यहां पर करिश्मा कपूर बिल्कुल नहीं चूकी। उन्होंने साफ बोल दिया कि बॉडी डबल की जरूरत नहीं है, मैं खुद ये सीन करूंगी, और उन्होंने रियल लाइफ में वो थप्पड़ खाया इस सीन को परफॉर्म करने के लिए। प्रोफेशनलिज्म बाबू भैया, प्रोफेशनलिज्म। इस थप्पड़ की गूंज तो उस सीन में आज तक सुनाई देती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: करिश्मा कपूर कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, ये बात तो क्लियर है। अब वो करीना कपूर की रेफ्यूजी फिल्म के लिए प्रिपरेशन करवाना हुआ, उनके साथ साथ उनके डायलॉग्स की प्रैक्टिस करवाना हुआ, या फिर एक छोटी सी लड़की को ऑटोग्राफ देना हुआ, जब उस लड़की ने करिश्मा को माधुरी समझकर ऑटोग्राफ लिया। मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड दिस रियली हैपेंड इन द 90s, जब करिश्मा कपूर एक डांस कॉस्ट्यूम पहने हुए, लंबी सी चोटी और फ्लैशी लहंगा पहने हुए एक स्टेज शो कर रही थी। एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई बैक स्टेज में और कहती, माधुरी दीदी एक ऑटोग्राफ दे दो। करिश्मा ने मुस्कुराकर वो ऑटोग्राफ दे दिया। एंड लेटर ऑन जब उन्होंने इस किस्से का कहीं जिक्र किया था तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा था कि दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट शी एवर रिसीव्ड, विच शोज अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी दैट दिस पर्सन कैरीज। इनफैक्ट दिल तो पागल है करने के लिए काफी सारी एक्ट्रेसेस ना कर चुकी थी, बिकॉज कोई भी माधुरी दीक्षित के साथ सेकेंड लीड नहीं करना चाहता था। एंड करिश्मा कपूर वॉज दी ओनली एक्ट्रेस हु सेड यस, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी कोई इनसिक्योरिटीज थी ही नहीं। एंड क्लियरली हर एक 90s किड की तरह करिश्मा कपूर वॉज ऑल्सो अ डाई हार्ड माधुरी दीक्षित फैन। वो अलग बात है कि दिल तो पागल है करने के लिए सिंस करिश्मा कपूर वॉज डांसिंग विद माधुरी दीक्षित, उनको बहुत कड़ी मेहनत

भी करिश्मा कैरीड ऑन. दैट इज करिश्मा का रियल करिश्मा. विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डीडीएलजे से उदित नारायण की आवाज में दिस गाना इस कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: रुक जा ओ दिल दीवाने, ओए होए। ये गाना सुनकर तो हमारा दिल भी दीवाना हो गया था वाकई में। लेकिन ये गाना कितना क्यूट है यार। मतलब एक बंदा जो है वो अपने दिल से बात कर रहा है कि यार सामने एक लड़की है जो अभी अभी दिखी है, लेकिन ए दिल तू तो रुक जा यार, थम जा जरा, इतना क्या एक्साइटेड है उस लड़की को देखने के बाद। और लड़के को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की है या है जादू या खुशबू है या फिर नशा। और वो अपने दिल से बार बार यही कह रहा था कि यार अगर वो पास आए तो छू के मैं देखूं जरा कि वो वाकई में एग्जिस्ट करती भी है या सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है। अपार्ट फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल लिरिक्स, देयर इज वन मोर थिंग अबाउट दिस सॉन्ग। इस गाने के एंड में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे राज जो है वो सिमरन को छोड़ के, यानी कि फर्श पे गिरा के और एकदम उंगाल के निकल जाता है। पर ये जो सीन था ना, ये हमने ऑन स्क्रीन देखा तो हमें बड़ा मजा आया, काजोल के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक थे। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन स्क्रिप्टेड नहीं था और काजोल को इसके बारे में नहीं पता था। ये सिर्फ और सिर्फ आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान की मिली भगत थी। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ऐसा करेंगे कि एंड में ना काजोल को इस तरीके से गिरवाएंगे और बड़े मजे आएंगे, और उसमें काजोल के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल रॉ निकल के आएंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड। तो आज जो हम वो एक्सप्रेशंस अभी भी देखते हैं इस फिल्म में काजोल के चौके हुए से, दोज आर रियल एक्सप्रेशंस बिकॉज शी हैड नो आइडिया दैट व्हाई डिड शाहरुख ड्रॉप हर। एंड चलो जी, जाते जाते ये गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ। यू एंजॉय द ट्रैक, अपना ख्याल रखना और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लेना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, क्योंकि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। और बस यू ही स्टे ट्यून टू मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये गाना क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छा म्यूजिक एवरग्रीन होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मेरा साया फिल्म का ये गाना, आशा भोसले की आवाज, मदन मोहन की कॉम्पोजिशन। ये मूवी आई थी 1966 में और इस गाने का जो रिवैम्प्ड वर्जन है और झुमका वाला जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आया था वो 2023 में आया था। क्या होते हैं 60 ईयर्स, मतलब एक गाना आप सोचिए 60s में रिलीज हुआ, उस टाइम के जो लोग थे उनकी पसंद बना, फिर अक्रॉस द इयर्स एंड डेकेड्स वो गाना लोगों को पसंद आता गया, इतना पॉपुलर। दिस इज द मैजिक ऑफ म्यूजिक बाय मदन मोहन जी, द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, जो ज्यादातर फेमस हैं अपनी मेलोडीज के लिए, अपनी गजल्स के लिए। तो सुन लेते हैं, रिटन बाय राजेंद्र कृष्ण, संग बाय लता मंगेशकर, फिल्म का नाम अदालत। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

कमाल ही करते हैं कोहली साहब. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन कोहली जी की. जी जैसे जैसे मास्टरपीसेस गाने इन्होंने बनाए हैं, यकीन नहीं होता कि इन्होंने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली. ऐसे बचपन में बेसिक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीखा, लेकिन जिस तरह के तगड़े इनके गाने हैं वैसी तगड़ी इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है. बंदा बॉर्न टैलेंट था भाई. उसके बाद इतना म्यूजिक सुना, कॉन्सर्ट शोज पता नहीं क्या क्या अटेंड किया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, 2 साल SD बर्मन साहब को असिस्ट भी किया. 1950 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म आंखें का म्यूजिक दिया, उसके बाद कुछ और म्यूजिक भी दिया लेकिन वो इतना हिट नहीं हुआ. मदन मोहन जी का पहला सुपरहिट गाना जिसे हम कह सकते हैं वो ये जो हम अभी सुनने वाले हैं. ये गाना ना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. इतना क्यूट प्यारा गाना है ये. 1956 की फिल्म भाई भाई. गाना लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, गाया है गीता दत्त ने. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: हकीकत फिल्म का ये गाना कंपोज्ड बाय द मैजिशियन कॉल्ड मदन मोहन जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं और काफी इंटरव्यूज में काफी इंटरेस्टिंग बातें उनके बारे में शेयर की थी उनकी मुंह बोली बहन लता मंगेशकर जी ने। तो लता मंगेशकर जी की आवाज में ही सुनते हैं कि ये भाई बहन की जोड़ी कैसे बनी, फिर इस जोड़ी का गाना भी सुनेंगे राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: 36 बरस बड़ा ही लंबा अरसा होता है और जब तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, उस जमाने की यादें ताजा होती हैं, तो एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात हो। 1948 में मेरा नाम थोड़े बहुत लोग जानने लगे थे, लेकिन मैं जानती थी कि अभी बहुत सी मंजिलें तय करना हैं। मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मैं खुश थी कि इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे याद किया। मैं खुशी खुशी फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंची। पता चला एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है, शहीद। उसी का एक डुएट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। न मैंने कभी उन्हें देखा था न गाना सुना था। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। ये जानकर हंसी आ गई, मालिक के बेटे का संगीत से क्या संबंध। भाई और बहन का गीत था, बोल थे, पिंजरे में बुलबुल बोले मेरा छोटा सा दिल डोले। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप उस फिल्म में ज़रूर गाइएगा। ये थी मदन मोहन से मेरी पहली मुलाकात। म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी आँखें। उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज राखी का दिन है, लो मुझे राखी बांधो। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे। और मैंने भी यही कोशिश की कि बहन का नाता पूरी तरह निभा।

0: Mirchi. It's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.
2: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान।

0: द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको और उनके म्यूजिक को ना उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके सीनियर्स बहुत रिगार्ड और अप्रिशिएट करते थे। सुनिए एक बार लेट नौशाद साहब ने इनके म्यूजिक के बारे में क्या कहा था।
1: मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोजर थे, खासतौर से गजलें जो कंपोज की बहुत ही लाजवाब। मैंने एक दफे उनकी गजल ऐसी में प्यार की आबरू वो जफा करे करे मैं वफा करूं, तो मैंने सुनी वो गजल इतनी पसंद आई, मैं मदन साहब के घर गया, मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गजल पर मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे, बेचारा रे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर हूं। अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज अच्छी चीज है, तुमने बड़ी अच्छी चीज ये बनाई।
0: वैसे जिस गजल की इन्होंने बात की वो अनपढ़ फिल्म से है, इसी का एक और माइंड ब्लोइंग गाना सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: बहुत ही बड़े फिटनेस फ्रीक थे कोहली साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मैं बात कर रही हूँ द आइकॉनिक म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन कोहली जी की। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनके बेटों संजीव कोहली और समीर कोहली से बात हुई तो सुनिए उन्होंने अपने फादर के बारे में क्या शेयर किया था।
1: वो कसरत करते थे, जो आजकल ट्रेनिंग होती है बॉडी की ट्रेनिंग, वो बहुत उनमें बिलीव करते। उनके पास एक ट्रेनर आता था पहले से ही, उनको अपने मसल्स का बहुत शौक था। टी शर्ट पहनते थे टाइट और लोगों को दिखाते थे मेरे मसल्स तुमने देखे हैं। दारा सिंह के साथ ये हमेशा इनका चलता था कि तुम्हारे मसल्स बड़े हैं कि मेरे बड़े हैं। बहुत शौक था अपने आप का ख्याल रखने का,
0: और शायद उनका यही पहलवान दिमाग और दिल था जो उनको उनके म्यूजिक को लेकर भी बहुत पैशनेट और परसिस्टेंट बनाता था। एक बहुत ही सुपरहिट गाना है जिसकी ट्यून फिल्म के डायरेक्टर को पसंद ही नहीं आ रही थी, लेकिन कोहली साहब अड़े रहे और उनको कन्विंस करके ही माना। तो सुन लेते हैं वो टाइमलेस क्लासिक गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

0: आई हो।
1: किशोर कुमार की आवाज में गाना कंपोज्ड बाय मदन मोहन, बहुत ही रेयर कॉम्बो है ये। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई दोनों दिग्गजों ने क्योंकि बहुत ज्यादा गानों में साथ में काम नहीं किया तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे बहुत ही यंग एज से, क्योंकि किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार और मदन मोहन के फादर राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली जी, ये दोनों बॉम्बे टॉकीज और फिर फिल्मिस्तान के लिए काम करते थे। तो ये दोनों लड़के अक्सर स्टूडियो में या कैंटीन में मिला करते थे और बातें करते थे कि साथ में काम करेंगे। एंड क्योंकि मदन मोहन जी अपने गानों को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते थे कि ये ही आवाज चाहिए, ये ही सिंगर चाहिए, तो जहां जहां जिन गानों में उनको लगा कि किशोर कुमार से उनको गवाना चाहिए, उन्होंने उनके साथ कोलैब किया। तो इसी सुपर्ब कोलैब का एक और गाना सुन लेते हैं, राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है, किशोर कुमार थे इस फिल्म में, उन्होंने ही गाया है। फिल्म का नाम है मन मौजी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मन्ना डे की आवाज में ये गाना, देख कबीरा रोया फिल्म का मदन मोहन की कॉम्पोजिशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैंने ना मदन मोहन जी की डॉटर संगीता गुप्ता के एक ब्लॉग में पढ़ा था कि मदन मोहन ने मन्ना डे को कन्विंस करने के लिए कि वो ये गाना गाएं, उनके लिए भिंडी मटन बनाया था। मतलब बकायदा उनको घर पे बुलाया कि मैं आपके लिए कुक करूंगा और आपको अपनी एक ट्यून सुनाऊंगा। भिंडी मटन का जादू चल गया, मन्ना डे ने गाना गा दिया। और सुनिए एक बार इस मल्टी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर की मुंह बोली सिस्टर यानी कि लता मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू में इनके बारे में एक और क्या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया था।
1: ये मेरी आंखों देखी बात है कि कभी कभी मदन भैया बस 10 मिनट में तर्ज बना देते थे, और तर्ज भी कैसी, वाह। शायरी पर वो बहुत जोर देते थे, जब तक शब्दों में गहराई ना हो गीतकार को कागज वापस लौटा देते थे। फिर कोशिश कीजिए, जब दिल से बात निकलेगी तब असर करेगी। एक दिन मजरू साहब का गीत रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तर्ज तो थी ही अच्छी, कविता बहुत ही सुंदर थी। रिकॉर्डिंग के बाद मदन भैया इतने ज़्यादा खुश थे कि फौरन पहुंचे स्टूडियो में शाबाशी देने शायर को। आप जानते हैं किस तरह शाबाशी दी? बेचारे मजरू साहब के पेट पर हल्के हल्के दर्जनों मुक्के बरसा दिए। मजरू साहब ठहरे शायर, और वो भी सुल्तानपुर यूपी के। मरहबा का ये तरीका उनके लिए यकीनन एक नया तजुर्बा था। पता नहीं पुरदर्द था या पुरकैफ। मदन भैया बोले, घर चलिए, मैं आपको अपने हाथ से पका कर खाना खिलाऊंगा। रस चाहे स्वर का हो चाहे रसोई का, वो दोनों में माहिर थे।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: वाओ, हकीकत फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे, भूपिंदर की आवाज में इन चार दिग्गजों को साथ में गवाना, ये काम तो मदन मोहन जी ही कर सकते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मदन मोहन जी अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये बात शेयर हुई थी उनके बेटों संजीव कोहली और समीर कोहली के साथ एक कॉन्वर्सेशन में, सुनिए।
1: ये किस्सा एक है कि जहाँ आरा फिल्म, जिसके गाने बहुत लोगों को पसंद थे, उस फिल्म के दौरान 1964 में रिलीज हुई, तो गाने 62-63 में रिकॉर्ड हो रहे थे, और वो इस बात पे अड़ गए कि मैं तलत महमूद से गवाऊंगा। और तलत महमूद साहब ने कुछ सालों तक गाया नहीं था बीच में, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी और दौर बदल रहा था। शायद डायरेक्टर ने कहा नहीं, ये गाने सिर्फ रफी गाएंगे, रफी साहब का नाम इतना हो गया था। लेकिन मदन जी ने कहा नहीं, रफी से मैं दो गाने जरूर गवाऊंगा, लेकिन ये तीन सोलोज जो है ये मैं सिर्फ तलत से गवाऊंगा। और बहुत झगड़ा हुआ और मदन जी ने कहा या तो मैं फिल्म छोड़ देता हूँ या फिर मैं ये गाने अपने पैसों से रिकॉर्ड करूंगा, तुम्हें रखना है रखो, नहीं तो ये गाने फिर मेरे हो गए। और वो गाने रिकॉर्ड हुए और वही तलत साहब की आवाज में रहे। और इनकी जिद थी कि मुझे मालूम है मेरे गाने के लिए क्या आवाज ज्यादा सूट करेगी। रफी साहब ने भी गाया उस फिल्म में, लेकिन तलत साहब के गाने ज्यादा चले।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu only on.

वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ इंडियन सिनेमा मदन मोहन जी. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. 21 साल की उम्र से इन्होंने म्यूजिक में अपना करियर बनाने की शुरुआत की, लेकिन एक कहते हैं ना सक्सेस या रिकग्निशन या उनका पहला सुपरहिट गीत वो उनको मिला जब वो 32 साल के थे. मदन मोहन कोहली जी की अपनी स्ट्रगल है बावजूद इसके कि वो प्रिविलेज थे. कैसे? ऐसे कि इनके फादर श्री राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली जी ये बॉम्बे टॉकीज या जो बाद में फिल्मिस्तान बन गया उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों से जुड़े. बल्कि पिताजी तो चाहते थे कि वो आर्मी में जाएं, और वो आर्मी में गए, 2 साल सर्व भी करके आए, लेकिन म्यूजिक से दूर नहीं रह पाए. और मदन मोहन जी जब फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर बनने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, तब इनके फादर ने सभी लोगों को मना कर रखा था कि भाई इसको काम मत देना. ऊनो रिवर्स होता है, यहाँ पे नेपोटिज्म रिवर्स हो गया था. पर वो कहते हैं ना कि इश्क मुश्क और अच्छा टैलेंट छुपाए नहीं छुपते हैं. बंदा इतना टैलेंटेड था कि उसको काम मिलता गया और हिंदी फिल्मों को एक से एक बढ़कर गाने. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची.

0: मदन मोहन जी ने इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं उनको लगता था कि उनके काम को ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट 1970 की फिल्म दस्तक के म्यूजिक के लिए जब उनको नेशनल अवार्ड मिला तो इस खबर पे उनको यकीन ही नहीं हुआ। सुनिए एक बार लता मंगेशकर जी ने उनके बारे में क्या शेयर किया था।
1: बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।
0: वैसे इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना मदन मोहन ने भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था। थोड़ी साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, बट इट इज वर्थ लिसनिंग टू इट। सुनिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्च।

0: जितने सुरीले मदन मोहन जी के गाने उतना ही कड़क उनका गुस्सा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और गुस्सा इसीलिए क्योंकि इतने पैशनेट थे वो म्यूजिक को लेकर। एक गाने की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब क्या हुआ था, उनके जो बेटे हैं संजीव कोहली और समीर कोहली, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये इंसिडेंट शेयर किया था, सुनिए।
1: एक गाना था नैनो में बदला छाए, फिल्म मेरा साया का, वो रिकॉर्ड हो रहा था। बड़े बड़े म्यूजिशियन थे, शिव कुमार शर्मा जी संतूर पे थे, रईस खान सितार पे थे, लेकिन कोई रिदम वाले गलती बार बार कर रहे थे। उस वक्त क्या था कि रिकॉर्डिंग एक साथ होती थी, ये 60s की बात है, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो सिंगर और म्यूजिशियंस को साथ में परफॉर्म करना पड़ता था। तो अगर म्यूजिशियन गलती करे वो गाना उसी वक्त रोक दिया जाता था, फिर से दोबारा रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये चलता रहा और करीब 12-13 टेक ऐसे कोशिश हुई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना भी था और बहुत क्लासिकल गाना है, भीम पलासी पर आधारित। तो वो गाना कट होता गया और ये इतने चिड़े मदन जी कि उन्होंने जाके अपने हाथ से स्टूडियो का जो शीशा होता है कंट्रोल रूम और सिंगर की बूथ के बीच, इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो शीशा टूट गया। उनका हाथ में मतलब खून बहने लग गया, जल्दी से पट्टी बांध दी और कहा, लोगों ने कहा इस हॉस्पिटल ले चले, कहा बिल्कुल नहीं, जब तक ये गाना या अभी रिकॉर्ड नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और अगला टेक परफेक्ट हुआ। ये किस्सा लता जी सुनाती हैं और वो कहती हैं मैं इतनी थक गई थी गा गा के, लेकिन हम इतना डर गए और घबरा गए मदन जी को देख के, फिर शायद जो गाना हमने फाइनली रिकॉर्ड किया वो इसी वजह से इतना अच्छा हुआ।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: क्या हुआ जब यश चोपड़ा ने फोन किया जावेद अख्तर को वीर ज़ारा फिल्म के गाने लिखने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये शेयर किया था जावेद अख्तर साहब ने एक टेलीविजन शो पर, सुनिए।
1: जो उन्होंने मुझे बताया इस पिक्चर के बारे में वीर ज़ारा, उसमें आपसे मैं गाने लिखाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे गाने हैं और आप ही करेंगे। तो मैंने कहा इसमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो कहले मदन मोहन जी। तो मैंने समझाया शायद मजाक कर रहे हैं, मदन मोहन जी को तो गुजरे 25 साल हो गए, तो आप क्या कह रहे हैं। कहले भाई उनकी बहुत सारी ट्यून्स थी जो उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उन्होंने उन्हें संभाल के रखा था और उन्हीं के सुपरविजन में ये हम वही ट्यून्स पे गाने करेंगे।
0: कितनी फैसिनेटिंग बात है ये। और आपको पता है तेरे लिए हम हैं जिए वीर ज़ारा का जो गाना है, ये ट्यून ओरिजिनली जिस गाने के लिए बनी थी वो मदन मोहन साहब ने ऐसे रिकॉर्ड करके भी देखी थी। थोड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग है तो साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर सुनिए जरा।

दिल ढूंढता है, मौसम फिल्म का गाना। ये फिल्म जिस साल रिलीज हुई 1975 में, उसी साल मदन मोहन जी भी नहीं रहे, बट हिज म्यूजिक लिव्स ऑन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

इंडस्ट्री दिल तो पागल है, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, फिदा और जुबेदा तक करिश्मा ने सिर्फ हिट फिल्म्स नहीं दिए बल्कि हर जॉनर में अपनी पहचान बनाई है। इनफैक्ट नेशनल अवार्ड एंड मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड उनकी इसी वर्सेटैलिटी का प्रूफ है। और भाई साहब, जहां तक बात आती है इनके डांस की, तो वो गोविंदा के साथ इनकी एनर्जी हो या फिल्म दिल तो पागल है का ग्रेस, ये सब कुछ आज भी एक बेंचमार्क माना जाता है। एंड द आइसिंग ऑन द केक इज कि उनके आइकॉनिक लुक्स एंड सॉन्ग्स जो हैं, वो आज के जेन ज़ी भी रिक्रिएट कर रहे हैं, प्रूविंग दैट करिश्मा कपूर इजंट जस्ट अ स्टार ऑफ द 90s, शी इज अ टाइमलेस बॉलीवुड वाइब। सो मेरे और पूरी मिर्ची टीम की तरफ से हियर्स विशिंग हर अ हैप्पी हैप्पी बर्थडे। देखो यार, आप सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नॉस्टैल्जिया का सबसे खूबसूरत चैप्टर है।

0: है झुमका।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पे ट्यून इन हो आप, और अगर आप नए हैं ऑन माय शो देन यू वुड डेफिनेटली बी लाइक, अरे ये क्या खेलने की बात कर रही है लड़की। बट एक्चुअली दिस इज दिस फिल्मी गेम जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने की कोशिश करती हूँ। सो द थिंग इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, देन आई गिव यू अ कॉल और फिर इस गेम की होती है शुरुआत। आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अतुल जी, आर यू रेडी?
3: यस बिल्कुल श्योर।
0: ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके लिए मेरा है, जो भी ला रहे हो दो लाना। राजपाल यादव का ये डायलॉग किस फिल्म में है?
3: चुपके चुपके, चुप चुप के, राइट।
0: हाँ, चुप चुप के में असली में डेफ एंड म्यूट कौन है?
3: करीना कपूर।
0: सर फिर
3: गलत। नहीं भाई, करीना कपूर, करीना कपूर।
0: करीना कपूर लॉयर किस फिल्म में बनी है?
3: ऐतराज।
0: ऐतराज में अक्षय कुमार को मोलेस्ट कौन करता है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा मॉडल किस फिल्म में बनी है?
3: फैशन।
0: फैशन में सेकेंड सुपर मॉडल कौन है?
3: कंगना रावत।
0: कंगना किस फिल्म में अकेले अपने हनीमून पे जाती हैं?
3: क्वीन। क्वीन
0: क्वीन में उनका इतना लाइफ किसने खराब कर दिया है?
3: राजकुमार राव ने।
0: वाह, राजकुमार राव की किस फिल्म में सरकटा है?
3: स्त्री टू।
0: वाह क्या बात, स्त्री टू में स्त्री कौन है?
3: श्रद्धा कपूर।
0: श्रद्धा कपूर को किस फिल्म में एक अल्कोहलिक से प्यार हो जाता है?
3: आशिकी टू।
0: कहीं पे रुक जाएंगे सर, सारा कुछ ही पता है आपको। माय गॉड, आई एम डाउटिंग माय क्वेश्चंस नाउ। एनीवे, आशिकी टू में लास्ट में कौन मर जाता है?
3: आदित्य रॉय कपूर।
0: आदित्य रॉय कपूर किस फिल्म में बनी के दोस्त हैं?
3: ये जवानी है दीवानी।
0: ये जवानी है दीवानी में कौन उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है लेकिन रुकना नहीं चाहता?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर के पास किस फिल्म में सुपर पावर है?
3: ब्रह्मास्त्र
0: में शिवा से किसको पहले ही दिन प्यार हो जाता है?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट एज अ हॉकी प्लेयर किस फिल्म में है?
3: आई थिंक उड़ता पंजाब। नहीं, शायद मे बी उड़ता पंजाब।
0: यू आर राइट। उड़ता पंजाब में नशेड़ी आर्टिस्ट कौन है?
3: नशेड़ी आर्टिस्ट, सॉरी श्रुति ये मुझे नहीं पता, दिस इज वेरी टफ। आई थिंक दिलजीत दोसांझ का ब्रदर है, उसका नाम नहीं पता मुझे।
0: नहीं सर, यहाँ आपने गलती कर दी, बट कोई बात नहीं, इस लेवल तक इस गेम को पहुंचाना ऐसे बाएं हाथ का खेल होता नहीं। बट यस, यू आर डेफिनेटली आर
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई निखिल जी जिस पॉइंट पे अटके हैं उसके आगे का गेम कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: की गल करनी है
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Mirchi, it's hot.
1: Man nikla, oh good.

0: बार फॉलो मी ऑन माय चैनल
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, इट्स